0: बना मिला कर रंग करो बना ले टोका एक सोचे को इंगंदी लुंगो डम्मा बन प्रचलनन डम्मा बन बार स्वापनी कचार पट्टे का उमर को
1: या